0: गाइज एकछिन यतै रेस्ट गरौँ है।
1: राहुल एकदमै थाके जस्तो छ।
0: तिम्रो लागि त आठचोटि सगरमाथा चढ्न सक्छु।
1: ए त्यस्तो के छ नि मामा?

0: ऊ हेर त तिम्रो मामा घर।
1: वाओ, कस्तो राम्रो है मम्मी।
0: आमा, हामी घरमाथि मैदानमा आइपुग्यौँ।